ताब्रो वो चिन्नो गेम को नी तो उसको इच्छा चुके गोल से थी नहीं ले पेटू तक चुकुल लुकबो का मनुत इन का सरुए चुतन ये कैसे भी गोल से आगे मीन के सुए चनन को मुचे से नेने के नबो इगस रुद के म्याच को अब तीन देते नतीन जंगुल का तीत को गोल के सुए चबुआने इन जोकी नेत अब जब मंगे मेगे में उद चौतन को अराका WH11 अक हराका WH301 चुतारे का सरता भी तुसिक दिसाई नी अब वे बोगा लगेंगा अक्टिव टेम की चोग असीगस कंबुनी ता वेस्टर्न सीड को तुझे के स्वेग अलग हूँ अमेरिका 403 टीम का सर्तन नुआच असीगस अगुबु आने को करारन कुन्यली लेन अमेरिका 505 चिमंगे में म्यान वागे अगुबु रूद चेम्याच अमेरिका 507 चितिंगे मोबे चेगी मेन अगुन्यली लेन कुबातो करारन इनसाइलेज अमेरिका 508 चिगे से निबांडे के चांग अगुबु ने रूद चेमीचन बरागा मेन को सीरिन का सारे तन बरोब तन नुआच केरी इलेगे बाईसेन के स्विच या नॉटिन कुबुन वेस्टर्न सीड मेस रूटेजन राइनी अग्रोडीला अग्रोवेट डिस्ट्रीब्यूटर टुपांडे अनको केवे आउटलेट अगे टुगुल ने नेगे तेनन एन टेबुल अगे टुगुल इबिरसी मेट को नंबर 0705 505 505 अनन एफजी तो दुजे टैब मेसे टैब टैग एफएम वेस्टर्न सीड कंपनी ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी टू द फार्मा.